0: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: ਰਤਮਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
3: ਐਲਫਾ ਸਭ ਦਮਦਾਰ ਔਰ ਰੋਮਾਂਚ ਕਹਾਣੀ।
4: ਐਲਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸਕਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
3: ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰਟੇਨਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਕੋ।
4: ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
3: ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਸ਼ਰਵਰੀ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਔਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਸਟਾਰਰ।
5: ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਗਨੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ
3: 3 ਜੁਲਾਈ ਕੋ ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰੋਂ ਮੇ। ਅਲਫਾ
6: ओबिट
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
7: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042। रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
10: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
11: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ, ਆਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390-866-655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
12: ਬਲਜੀਤ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਚਲੀਏ?
7: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
12: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ, 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2545-45।
13: क्या आप
9: एक ड्रिंक के लिए मना करना पसंद करेंगे या फिर ये कहना कि नहीं मैंने अपना लाइसेंस गवा दिया है।
13: वैसे मैं ज्यादा शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। हमारे काम पर एक सेलिब्रेशन था और मुझे लगा कि मैं ड्रिंक लेने से मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैंने तो कानूनी सीमा के भीतर ही पी है, लेकिन मुझे 0.05% से ज्यादा ब्लड अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया। अब मैं ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता।
9: जिम्मेदारी से रहें। अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।

0: ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24 ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 04332802552 ਤੇ 04332802522।
1: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका चुन
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
4: वेट कर रहा है तुम्हारा।
0: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उडीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
5: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा sleep and relax दा Indian style room वाला गद्दा खरीदिया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
5: और सुनो, हुन sleep and relax हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। sleep and relax दा एक स्टोर Leverton North अते दूजा नवा स्टोर Ohans Road Epping विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो sleep and relax, wake up feeling totally rested। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
6: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
7: ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
8: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
7: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
0: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ। ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ? ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆ ਗਿਆ ਜੀਜੇ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 04400450555 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 104 Collins Road, Melton।
9: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
10: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
11: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
12: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
13: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
12: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: सोना चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ
3: ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਂਜ ਸਾਡਾ

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road.
2: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: अल्फा, सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर, 3 जुलाई को।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा,
4: इंडिया अल्फा से डरेगा।
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
8: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने, इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
2: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
9: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
10: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
9: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराई।

0: टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तो आडे नाल।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
4: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वेट कर रहे तुम्हारा।
7: हम थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
8: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा The smart choice।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच भी तुहाडी सेवा विच।

इंसानियत छड्डी बैठे ने, यह बड़े वड्डे सवाल उठते ने। ब्रिस्बेन दे साउथ दे विच एक स्कूल दे अंदर ही वापरी एक घटना दे विच एक टीनएजर दे उत्ते हमला किया गया। क्वींसलैंड पुलिस ने दसिया है कि इस हमले दे जिहड़ा हमला वापरिया है इस्लामिक कॉलेज ऑफ ब्रिस्बेन दे विच वापरिया, जिसका कि कारवथा नाम दे सबब दे विच अकेशिया रोड दे उत्ते कैंपस बनिया होया। क्वींसलैंड एंबूलेंस सर्विस नू सवेरे 12:15 के आसपास सद्या गया। दसिया गया कि इस विद्यार्थी दे उत्ते तेजधार हथियार दे नाल हमला किया गया। एक होर लड़का जिसकी उम्र 17 साल है, उसदे भी सट्टां लगियां ने, पर वह नॉन लाइफ थ्रैटनिंग ने, यानी कि उसकी जान नू कोई खतरा नहीं है। इस मामले च एक होर 16 साल का लड़का गिरफ्तार करके पुलिस की तरफ तो पड़ताल की जा रही है। खबरां दे अज दे इस सैगमेंट दे विच फिलहाल इन्ना ही, दिओ इजाजत, धन्नवाद, सुनदे रहो रेडियो हांजी 1674। बाकी दे प्रोग्राम खबरां जानकारियां इसे तरह दे नाल साडी फ्रीक्वेंसी मोबाइल ऐप ते वैबसाइट तो जारी रहनगियां। धन्नवाद।

0: दमदार और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डेंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
5: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एन एज सरपंच।
6: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
5: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: कर आज स्टार आज लाइनू।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल
3: 4-9-3-5-3-6-0-4-2। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल।
6: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733
1: VY Immigration and Education Consultant
5: हर कदम तुहाडे नाल।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा

0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
0: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिन विच ही सोल्ड आउट हो चुका है। हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लाई विजिट करो livenation.com.au। गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वाले नू लीगल वाले नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वाले ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: वाओ, तेरे सबने खुशबू और टेस्ट विदा कमाल मैनू ए सीक्रेट
1: ब्रिट एक आले गोल्ड डेरी दे और न्यूजीलैंड ईदा निविच फ्री रेस्पेड गावा तैयार स्विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स ये एंटीबायोटिक बिल्कुल प्रे की प्लास्टिक दे डब्बिया नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर पैक हुंदा है
0: तो भी आज ही ट्राई करो गोलीफ द प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े इंडियन ग्रोसरी स्टोर विजिट goldairy.com
2: He said go stand for dented wood teeth while cry Ford Ranger for duty Everest the Bahar Wang brand new dented quality owned vehicles trade in at the finance options available okay apni new Ford the test drive karo business hai gal kar vehicle experts team ups ya koi naal radio hanji hawale naal pa 3 saal di service check Stanford reset Ford
3: ye the niche ki pakka view up ki chuka hai
4: jo nahi 1 saal to bhi vadda tajurba bansal imik da jinna course vich chankrai fir mainu PR ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ATF ਸਕਿਲਡ ਪੀਆਰ ਯੂਐਸ

0: सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड टी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

कोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दे दा दे लै दे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खा हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पा।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंग

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेख है सिर जनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

तीरे सुनियार एरन मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित काल कड़िए शब्द सची टक।

आप श्री मुख वाग्पाद सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेक पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियां प्रिया।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोकमाता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे।

कालांकान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य।

कृति हैं कि छत्रंग छत्री हैं कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं कि आप अभेव हैं कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी की सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदाम गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथ्वल प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व

गुणगन मुदाम अर बार अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले है अर काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए शराब समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूत बिचारे इते पै तो कांपे बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे ऊत पवेख पवान के पुब कौन गुनैनी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हार सुबह सुबिचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दलिंग।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्द है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न।

माया अगन सावी को जई करता है खेल नचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

नमस्कार, सुप्रभात। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हमने शुरू कर दिया है अपना पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। बस एक दिन का इंतजार और फिर वह शुभ घड़ी आने वाली है, जिसका करोड़ों भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई श्री बलभद्र जी और बहन देवी सुभद्रा महारानी के साथ अपने दिव्य रथों पर विराजमान होकर निकलेंगे अपने भक्तों को दर्शन देने। उड़ीसा के श्री पुरी धाम में होने वाली यह रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के असीम प्रेम और करुणा का जीवंत संदेश है। हर वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से पुरी पहुंचते हैं। किसी के हाथ में माला होती है, किसी की आंखों में आंसू, और हर हृदय में बस एक ही अभिलाषा, एक बार प्रभु के दर्शन रथ पर हो जाएं। बस उनके रथ की रस्सी खींचने को मिले ना मिले, छूने का सौभाग्य मिल जाए केवल। ऐसे हैं हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण कहो, राम कहो या जगन्नाथ कहो, हमारे जगन्नाथ जी से बस यही प्रार्थना है कि बस आप अपनी विशाल आंखों से हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान चलता रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो शास्त्रों में कहा गया है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना, उनके रथ का स्पर्श करना या श्रद्धा से उनकी यात्रा का स्मरण करना भी आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं, जो ब्रजवासियों के विरह में इस रूप में कलयुग के लोगों को तारने के लिए आए हैं। भक्त गुंडीचा मंदिर को वृंदावन और श्री मंदिर को द्वारिका का प्रतीक मानते हैं, जहां से रथ पर भगवान अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर आते हैं। भगवान 7 दिन तक विराजमान रहते हैं और फिर यात्रा के माध्यम से पुनः श्री मंदिर लौट जाते हैं। रथ यात्रा के तीनों रथ भी अपने आप में अद्भुत हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसमें 16 पहिए या चक्के होते हैं। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसमें 14 चक्के होते हैं। और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। और देखिए, ये कोई मॉडर्न व्हीकल नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर वर्ष एक विशेष प्रकार के पवित्र वृक्ष की लकड़ी से ही इन रथों का निर्माण होता है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके आज भी जारी है। भगवान श्री जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे हर उस हृदय तक पहुंचना चाहते हैं जहां प्रेम, श्रद्धा और भक्ति हो। रथ यात्रा पर केवल भगवान के दर्शन ही ना करें, बल्कि अपने जीवन के रथ की बागडोर भी प्रभु को समर्पित करें। अपने मन को वृंदावन बनाइए और भगवान को उसमें आने के लिए निमंत्रण दें, पुकार लगाएं। 7 दिनों तक भगवान मनुष्यों के साथ साथ अन्य किन किन जीवों पर करते हैं अपनी कृपा, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो रथ यात्रा के दौरान जब भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा महारानी गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो वे तुरंत मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते। वे 7 दिनों तक अपने भव्य रथों पर ही विराजमान रहते हैं। सोचिए, जो भगवान वर्ष भर अपने सिंहासन पर ही विराजते हैं श्री मंदिर में, वे 7 दिन तक खुले आकाश के नीचे अपने भक्तों के बीच रथ पर ही क्यों रहते हैं? भगवान चाहते हैं कि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित ना रह जाए। दूर दराज से आने वाले वृद्ध, बच्चे, गरीब, अमीर, असहाय, हर किसी को बिना किसी बाधा के प्रभु अपने दर्शन देते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं रथ पर ही विराजमान रहते हैं। किंतु इसके साथ एक अद्भुत मान्यता भी जुड़ी है। कहा जाता है कि इन 7 दिनों में केवल मनुष्य नहीं बल्कि सूक्ष्म लोकों के अनेक जीव, भूत, प्रेत, पितर और ऐसी आत्माएं जो सामान्य रूप से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, वे सभी भगवान की कृपा पाने आती हैं। और एक दिन तो भगवान की करुणा, भगवान को अर्पित होने वाला महाप्रसाद केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए भी होता है। इसी करुणा के कारण भगवान जगन्नाथ जी को पतित पावन कहा जाता है। अर्थात भगवान कृपा बरसाते हैं उन पर जो गिरे हुए हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, असहाय हैं। सभी का उद्धार करते हैं हमारे जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह घोषणा है कि भगवान सबके हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो। यही भगवान जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान यही संदेश देते हैं कि यदि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे द्वार तक आ जाऊंगा। इसी भाव को अपने मन में बसाकर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अपनी आंखों से एक बार देखिए जरूर, उनकी कृपा पाइए जरूर और प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
2: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।

नमस्कार, सुप्रभात। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हमने शुरू कर दिया है अपना पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। बस एक दिन का इंतजार और फिर वह शुभ घड़ी आने वाली है, जिसका करोड़ों भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई श्री बलभद्र जी और बहन देवी सुभद्रा महारानी के साथ अपने दिव्य रथों पर विराजमान होकर निकलेंगे अपने भक्तों को दर्शन देने। उड़ीसा के श्री पुरी धाम में होने वाली यह रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के असीम प्रेम और करुणा का जीवंत संदेश है। हर वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से पुरी पहुंचते हैं। किसी के हाथ में माला होती है, किसी की आंखों में आंसू, और हर हृदय में बस एक ही अभिलाषा, एक बार प्रभु के दर्शन रथ पर हो जाएं। बस उनके रथ की रस्सी खींचने को मिले ना मिले, छूने का सौभाग्य मिल जाए केवल। ऐसे हैं हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण कहो, राम कहो या जगन्नाथ कहो, हमारे जगन्नाथ जी से बस यही प्रार्थना है कि बस आप अपनी विशाल आंखों से हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान चलता रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो शास्त्रों में कहा गया है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना, उनके रथ का स्पर्श करना या श्रद्धा से उनकी यात्रा का स्मरण करना भी आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ है जो ब्रजवासियों के विरह में इस रूप में कलयुग के लोगों को तारने के लिए आए हैं। भक्त गुंडिचा मंदिर को वृंदावन और श्री मंदिर को द्वारिका का प्रतीक मानते हैं, जहां से रथ पर भगवान अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर आते हैं। भगवान 7 दिन तक विराजमान रहते हैं और फिर यात्रा के माध्यम से पुनः श्री मंदिर लौट जाते हैं। रथ यात्रा के तीनों रथ भी अपने आप में अद्भुत हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसमें 16 पहिए या चक्के होते हैं। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसमें 14 चक्के होते हैं। और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। और देखिए, ये कोई मॉडर्न व्हीकल नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर वर्ष एक विशेष प्रकार के पवित्र वृक्ष की लकड़ी से ही इन रथों का निर्माण होता है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके आज भी जारी है। भगवान श्री जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे हर उस हृदय तक पहुंचना चाहते हैं जहां प्रेम, श्रद्धा और भक्ति हो। रथ यात्रा पर केवल भगवान के दर्शन ही ना करें, बल्कि अपने जीवन के रथ की बागडोर भी प्रभु को समर्पित करें। अपने मन को वृंदावन बनाइए और भगवान को उसमें आने के लिए निमंत्रण दें, पुकार लगाएं। 7 दिनों तक भगवान मनुष्यों के साथ साथ अन्य किन किन जीवों पर करते हैं अपनी कृपा, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो रथ यात्रा के दौरान जब भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा महारानी गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो वे तुरंत मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते। वे 7 दिनों तक अपने भव्य रथों पर ही विराजमान रहते हैं। सोचिए, जो भगवान वर्ष भर अपने सिंहासन पर ही विराजते हैं श्री मंदिर में, वे 7 दिन तक खुले आकाश के नीचे अपने भक्तों के बीच रथ पर ही क्यों रहते हैं? भगवान चाहते हैं कि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित ना रह जाए। दूर दराज से आने वाले वृद्ध, बच्चे, गरीब, अमीर, असहाय, हर किसी को बिना किसी बाधा के प्रभु अपने दर्शन देते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं रथ पर ही विराजमान रहते हैं। किंतु इसके साथ एक अद्भुत मान्यता भी जुड़ी है। कहा जाता है कि इन 7 दिनों में केवल मनुष्य नहीं बल्कि सूक्ष्म लोकों के अनेक जीव, भूत, प्रेत, पितर और ऐसी आत्माएं जो सामान्य रूप से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, वे सभी भगवान की कृपा पाने आती हैं। और एक दिन तो भगवान की करुणा, भगवान को अर्पित होने वाला महाप्रसाद केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए भी होता है। इसी करुणा के कारण भगवान जगन्नाथ जी को पतित पावन कहा जाता है, अर्थात भगवान कृपा बरसाते हैं उन पर जो गिरे हुए हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, असहाय हैं। सभी का उद्धार करते हैं हमारे जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह घोषणा है कि भगवान सबके हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो। यही भगवान जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान यही संदेश देते हैं कि यदि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे द्वार तक आ जाऊंगा। इसी भाव को अपने मन में बसाकर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अपनी आंखों से एक बार देखिए जरूर, उनकी कृपा पाइए जरूर और प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: थैंक यू लाल जी,
1: लाल जी मजाकिया बहुत ने
0: ना, बहुत खराब करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद तुहाडा, मेहरबानी। तो एक बर्थडे है जी, गुरी सिंह जी कहते ने कि सत श्री अकाल, प्लीज़ विश माई बैटर हाफ सरबजीत कौर जी, उन्हों का अज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई है जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सरबजीत कौर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत बधाई गुरु जी, तुहानू भी सारे परिवार को। तो थैंक यू, तुसी साडे नाल ये खुशियां सांझियां कीतियां, रब तुहानू होर भी खुशियां दवे, तो जिंदगी दा वरा तुहाडा यादगारी हो निबड़े। सरबजीत जी बहुत बहुत बधाई, रब तंदुरुस्ती दवे, चढ़दी कला दवे, प्यार इतफाक बनया रवे, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन दियां। नवराज बाल जी कहिंदे ने मिकलम तो भी सत श्री अकाल सारिआं दे लई,
1: हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ कह रहा।
0: संजय पूजा जी कहिंदे ने कि अज की कहानी वधिया लगी, तो बहुत मेहरबानी जी। तो गुड मॉर्निंग की सांझ पाते ने सज्जन, ये कितों कि देश तो जी भाई दस्यो माड़ा जहा, +85 ये कितों का होया भला, तो पर धन्यवाद तुहाडा एलेक्स, बहुत मेहरबानी जी। तुसी ये वाहवा दूरों भेजा मैसेज, तो दस्यो तो सही भी ये किहड़ा देश आ, किहड़ी जगह तो भेज रहे हो तुसी, तो मेहरबानी। एडी दूरों बैठे तुसी सांझां पाईआं ने, ये टेक्नोलॉजी नूं सलाम भी, एडी दूर बैठियां एक दूसरे की गलबात सुन ली दी है, पढ़ ली दी है। तो हुण तुहाडे कोलों इजाजत लैने, हसदे खेडदे रहो, चढ़दी कला दे विच रहो, तो सुनते रहो रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: ஆரஞ்சுல ஐனு
1: ரெடி செட் கோ செட்ஸ்டன் ஃபோர்ட் டென்டினோங் ரோட் டே துவானு உடிக்கிறே ஃபோர்ட் ரேஞ்சர் ரேஞ்சர் சூப்பர் டியூட்டி Everest the Sadabahar was dang brand new demo the quality pre-owned vehicles trade in at the finance options we available aao te apni navi ford da test drive karo business fleet like gal karo vehicle experts tim forbes ya kori nal radio hanji re hawale nal pao 10 saal di free service chetston ford ready set ford
2: alpha sabse damdar aur romantic kahani
3: Alpha program uska chunna hai
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
2: आलिया भट्ट शर्वरी अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अल्फा
3: इंडिया अल्फा से डरेगा
5: वो वेट कर रहे तुम्हारा
6: टेंशन निरी टेंशन
7: क्यों हुआ
6: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
7: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
6: या 90-77-93
7: या ईमेल info@vivaimmigration.com
6: याद रखो 9077-9733
7: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
6: हर कदम तुहाडे नाल
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
8: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
9: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू इदे बारे दसन लई
8: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04-33-465-492
9: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए

सेंसस हो रही है, मर्दमशुमारी हो रही है, $40 या इस तो वध की तनखा कमाण का मौका, आखिरी मौका तुहाडे कोल हाले भी हैगा। आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ऐलान किया है कि वह हाले भी कुछ उम्मीदवारों नूं नौकरी दे उत्ते रख सकते ने। अज दा दिन शाम 5 बजे तक आखिरी मौका होएगा, जेकर तुसी हाले तक नौकरी अप्लाई नहीं कीती या बेरोजगार हो या फिर एक एक्स्ट्रा इनकम देख रहे हो, ते जेकर तुसी ऐसे किसी कामकाज दे विचों जिथे तुहाडी फ्लैक्सीबिलिटी है, तां सेंसस फील्ड जॉब्स जिहड़ियां ने ओह फिलहाल खुलियां ने। यह आरजी तौर दे उत्ते काम करन दे लई नौकरियां ने, फील्ड ऑफिसर, फील्ड मैनेजर, कम्युनिटी फील्ड ऑफिसर, रिमोट एरिया मैनेजमेंट टीम मैंबर या मोबाइल फील्ड रिप्रेजेंटेटिव या फिर लोकल एनगेजमेंट ऑफिसर, यह सारे रोल जिहड़े ने खुले पए ने हले। हाँ, सेंसस एनगेजमेंट मैनेजर या उपरले रोल जिवें ने, जिवें सेंसस ऑपरेशनल मैनेजर या रिमोट एरिया मैनेजमेंट टीम लीडर, वह सारे रोल हुण भरे जा चुके ने। उन्हां दीआं तां ट्रेनिंगां भी लगभग मुकने वालियां ने, हेठले जिहड़ियां भर्तियां ने उन्हां दीआं ट्रेनिंगां हले चलणगीआं। 11 अगस्त नूं आस्ट्रेलिया च सेंसस होना है, मर्दमशुमारी होनी है, पिछली बार 2021 दे विच होया सी, और काफी अहम हुंदे आ मर्दमशुमारी या जनगणना या सेंसस जो भी तुसी इहनूं कह लो। आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स दी तरफ तों देश भर दे विच इह नौकरियां जिहड़ियां ने हुण कुछ इक थावां दे उत्ते बचियां ने। उदाहरण दे तौर दे उत्ते फील्ड ऑफिसर, जेकर तुसी इह वी काम करना चाहोगे तां घट्टो घट $33 तां तुहानूं मिलणगे, बल्कि ट्रेनिंग दे वी पैसे अलग तों मिलणगे। पर इहनां दीआं कुछ इक इलाकियां दे विच ही इहनां दीआं सीटां या ये नौकरियां बाकी ने, जिवें विक्टोरिया दे विच शेपरटन या फिर मैनसफील्ड दा इलाका, न्यू साउथ वेल्स दे विच ग्रिफिथ दा इलाका या लाइटनिंग रिज दा इलाका या रिवरेन दा इलाका, जिंडाबेन दा इलाका जिथे ठंड बहुत पैंदी है, तस्मेनिया दे विच साउथ वेस्ट दा इलाका, साउथ आस्ट्रेलिया च आयर पेनसुएला दा इलाका, वैस्टर्न आस्ट्रेलिया च एस्परेंस या वीट बेल्ट दा इलाका या एक्समाउथ दा इलाका, इन्हां इलाकियां दे विच ही कुछ जॉब्स बाकी बचियां ने। बाकी मोटे तौर दे उत्ते होर भी बहुत सारियां नौकरियां ने जिहड़ियां हैवी पेड ने, जिवें रिमोट एरिया मैनेजमेंट टीम, जिहदे च $44 पर आवर दी भी सैलरी मिलेगी। सारे कुछ करन दे लई तुसी करना की है, बस इन्हां दी वैबसाइट दे उत्ते जाओ, livehire.com/careers दे उत्ते जाके तुसी इह नौकरियां देख सकते हो। एक बार फिर तो दस दईए, livehire livehire.com/careers दे उत्ते जाके /abs दे उत्ते जाके तुसी इह नौकरियां देख सकते हो, नहीं तो आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स दी यानी ABS दी वैबसाइट दे उत्ते जाके भी नौकरियां दी तलाश करो। फीफा विश्व कप दे विच ओह होया जिसकी उम्मीद नहीं सी, मन्या तां इह जा रहा सी कि बड़ा इंटेंस मैच होएगा, फ्रांस ते स्पेन दा सैमीफाइनल होना सी, हो भी गया, मुक भी गया, और फ्रांस इस टूर्नामेंट दे विचों जिहड़ा कि सब तो फेवरेट मन्या जा रहा सी ओह बाहर हो चुके हैं। स्पेन ने 0-2 दे नाल फ्रांस नूं हरा दिता, और इस बाल दा पहला 22वें मिनट दे विच गोल, ते फिर पैद्रो पोरो दा 28वें मिनट दे विच गोल, हालांकि एक गोल यमाल ने भी कर दिता सी, पर वह ऑफसाइड गोल हो गया। मुक्क दी गल इह कि फ्रांस दे लई इस मैच दे विच कोई मौका ही नहीं बचिया। कहा तां इह जा रहा सी कि स्पेन दी टीम दी एक डिफेंस तगड़ी है, ते फ्रांस दी मबापे या होर दूसरे खिडारियां दी या डेम्बेल दी तरफ तों जिहड़े भी ताबड़तोड़ हमले होणगे उहनूं स्पेन रोक लेगा, ते एक इंटेंस मैच देखण नूं मिलेगा। पर होया इह तों उल्ट, फ्रांस दे गोल दे वल स्पेन दी टीम ज्यादातर हावी रही, और इस तरीके दे नाल इस मैच नूं जित के हुण फाइनल मुकाबले दे विच पहुंच चुकी है। दस दईए कि दूसरा सैमीफाइनल भी कल दे दिन होना है, इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना, ते फिर तय होएगा कि थर्ड प्लेस दे लई फ्रांस ते दूसरी जिहड़ी टीम हैगी है उहदे चों जिहड़ी भी इंग्लैंड ते अर्जेंटीना मैच दे विचों जिहड़ी टीम हारदी है, उहनां दोहां दे विचों जिहड़ी टीम जित जाएगी उह तीजे प्लेस दे लई अपने तीसरे जिहड़ा रैंकिंग है उसदे लई अपना दावा पेश कर सकदी है। पर जेतू ते तौर दे उत्ते तां फ्रांस हुण अपना सफर खत्म कर चुके है। उधर भारत ते इंग्लैंड दा जिहड़ा पहला एक दिना मैच खेडिया गया बर्मिंगम दे विच, जिस दे अंदर भारत ने 6 विकटां दे नाल जित हासिल कीती। इंग्लैंड ने पहला बल्लेबाजी करदे होए 258 दौड़ां बनाईयां, जिस दे विच बेन डकेट दीआं 43 ते जॉ रूट दीआं नाबाद 76 दौड़ां शामिल सी। पर उस तो लियाम डेविड डावसन दीआं 68 दौड़ां तों इलावा
ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੜਨੂਰ ਬੜਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚਾਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 11 ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 5 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਬਾਦ 52 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਬਾਦ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।

0: ਰਾਂਝਲਾਈ
1: ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਗੋ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਰੇਂਜਰ ਰੇਂਜਰ ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ ਐਵਰੇਸਟ ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਸਟੈਂਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀ ਓਨਡ ਵਹੀਕਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੀਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਟਿਮ ਫੋਰਬਸ ਜਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਫੋਰਡ
2: ਸਭਸੇ ਦਮਦਾਰ ਔਰ ਰੋਮਾਂਚ ਕਹਾਣੀ
3: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
2: आलिया भट्ट शर्वरी अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अल्फा
3: इंडिया अल्फा से डरेगा
5: वो वेट कर रहा है तुम्हारा
6: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
7: की हुआ
6: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
7: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vivaimmigration.com
6: याद रखो 9077-9733
7: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
6: हर कदम तो आड़े नाल
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच